0: Behind me is the iconic textile market of Surat, where millions of meters of fabric change hands every day. But this market is also a window into how Surat's textile industry has transformed over the last 25 years. From traditional power looms to technology, digital trade and global ambitions, let's take a look at the story of Surat's textile evolution.
1: This is Surat, an industrial city in the state of Gujarat. Known as the synthetic textile capital of India, Surat has, over the years, embraced modern technologies to produce world-class textiles on a large scale. The synthetic textile industry in Surat is built on an extraordinary scale. The city has around 30,000 weaving units, more than 1,000 dyeing and printing units, and nearly 200 wholesale markets. Around 95% of these businesses are driven by small and medium enterprises, or SMEs, with thousands of factories producing textiles. It also accounts for roughly 65% of India's man-made fiber textile segment and around 90% of the country's synthetic yarn production. Across this vast ecosystem, an estimated 16 lakh people depend directly or indirectly on textiles for their livelihoods. The real picture of this transformation can be found in one family business. For 45 years, Ravi Sahani has run his shop at Millennium Market. He's accustomed to keeping his records the old-fashioned way, in books. But sitting beside him is his next generation, son Akshay, who has brought in computers, social media and digital business to help modernize the shop.
2: This year, there was a lot of change. And since Narendra Modi ji, 14-18 years, आ गए तब से हमारे लिए मतलब पहले चेक काटते थे बैंक में भरने जाते थे एक स्टाफ का टाइम पास होता था अभी क्या है आरटीजीएस करते हैं एक हमारा स्टाफ कम हो गया और दूसरा क्या है जीएसटी आई जब से जीएसटी आई हमारे को पेमेंट की प्रॉब्लम रही नहीं बिल्कुल भी कि टोटल पेमेंट हमारा पहले क्या था 50 रुपये 100 रुपये हर व्यापारी कम बेचता था कोरियर चार्ज लेस कर लेता था आज पूरा का पूरा पैसा अगर 55 रुपीज़ है तो 55 रुपीज़ ऊपर लग के आता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है पहले प्रोडक्शन का आज के प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा फर्क है आज किसी व्यापारी को घर में मैरिज भी करनी होती है तो स्पेशल सूरत चल के आता है या शॉपिंग करेंगे सस्ती मिलेगी पहले हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे हम आज ट्रेडर्स हैं आज हम लोग घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं
1: टू जनरेशंस वन बिजनेस एंड द कॉन्ट्रास्ट इज स्ट्राइकिंग फॉर रवि द लेजर रिमेन्स पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर अक्षय द कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन आर इक्वली इंपॉर्टेंट The shift is not just from paper to digital. It is a shift in the way a traditional textile business finds customers, takes orders, and competes in the industry.
3: We have to change a lot of things over the years because my dad started this business 45 years ago. And now I have been in this business for the last 15 years. So 15 years mein jo with time, jo generations itni fast hai, jo markets itne competitive hote ja rahe hain. Agar hum apne aap ko change nahi karenge, so there are around 1 lakh shops in Surat. This is Millennium Market, yahan pe 4200 shops hai. Agar humko yahan pe hum changes nahi layenge, to hum survive nahi kar payenge. Changes in sense, aaj social media bahut important role play karta hai. Jo bhi businesses hain, agar aap Instagram पे या YouTube पे आपकी एजेंसी से इसको टाई अप नहीं है आप ऑनलाइन नहीं है तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स आई डोंट थिंक आपका बिजनेस सर्वाइव भी कर पाएगा
1: द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर वेयर द टेक्सटाइल जर्नी एक्चुअली बिगिंस एट दिस पावर लूम यूनिट वीविंग इज नो लॉन्गर एज लेबर इंटेंसिव एज इट वंस यूज्ड टू बी मशीन्स हैव रिप्लेस्ड ह्यूमन हैंड्स
4: चेंजेस में तो लेबर में चेंजेस बहुत आए पहले लेबर 4-5 मशीन हैंडल करते थे अभी 14 मशीन एक साथ में हैंडल करते हैं अभी क्या है लेबर ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन को प्रीफर करते हैं इसलिए अभी लेबर का शिफ्टिंग ऑटोमेटिक मशीन के थोड़ा ज़्यादा हुआ है सर क्वालिटी में अभी क्या है लोग अभी ज़्यादा प्रीमियम कपड़े ज़्यादा प्रीफर करते हैं लेकिन अभी इसके लिए उसके हिसाब से क्वालिटी कपड़ा अपना जो उसको क्वालिटी बोलते हैं उसमें सुधार लाना पड़ता है तो उसमें अपना प्रोडक्शन भी ज़्यादा लगता है तो लोग अभी ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन के दौर प्रीफर करते हैं
1: टेक्नोलॉजी हैज बिकम सेंट्रल टू सूरत्स टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन द चेंज इज विजिबल इन प्रोडक्टिविटी टू Machines that once required several workers to operate are increasingly being handled by fewer, more skilled operators.
5: जो लूम्स थे

0: वो कहीं ना कहीं अपनी एक उम्र को खो रहे थे, उसके बाद में युवा पीढ़ी का यहाँ पर आना हुआ, इस बिजनेस को संभालना हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रास्ते खुले, सरकार का सपोर्ट मिला, कई चीज़ों की सब्सिडी और फाइनेंस को ईजी किया, तो उसके बाद में जो बाहर से इटली, जर्मनी, चाइना, यहाँ से जितना भी जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई, तो एक रफ्तार उसने सूरत के कपड़े ने उन मशीनों के जरिए पहुंचाई है। और उसमें सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूंगा कि जो पुराने ख्यालात से सूरत में बना है और नया जोश दोनों साथ में जुड़ा, तो होश और जोश से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। आज उसके अंदर रेपियर जेगार्ड, एयर जेट, वाटर जेट, डिजिटल प्रिंटिंग, इसके अलावा भी जैसे पॉलिस्टर बेस पर जो काम होता था उसके अलावा यहाँ पर विस्कोस का काम होने लगा, इसके अलावा नायलोन का काम होने लगा, बेम्बर का काम होने लगा। तो ये सब चीज़ें जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के दरवाजे खुले, तो एक रफ्तार और उसके अंदर एड ऑन हुई है। तो ऑटोमाइजेशन, ऑटोमेटिक मशीनों से कहीं ना कहीं सूरत ने और गति पकड़ी है। आज डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ मीटर कपड़ा ईयरली यहाँ से डिस्पैच होता है, और इम्पोर्ट की बात करें तो मशीनों की जो यहाँ हुई है और मशीनों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं सूरत की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया।
1: For decades, Surat's strength was its ability to produce and distribute large volumes of synthetic and man-made fabrics across India. Now, that ambition is to reach the global markets. In 2025-26, Surat district recorded textile and ready-made garment exports worth around 10,478 crore rupees. India's overall textile, apparel and handicraft exports crossed 3.25 lakh crore rupees in the same financial year. For Surat, the challenge is to convert its enormous manufacturing and trading base into a bigger export opportunity. Surat's textile story is not only about machines. Inside homes, women continue to keep another part of this industry alive through meticulous handwork. Zari, zardosi, mirror work, patchwork, and Ari embroidery turn ordinary fabric into intricate customized pieces. And for Jagruti Gabani, this has been a journey of 15 years.
2: World moti tiki, zardosi sab mein kar lete hai. वो उसको तो सब छोटा छोटा काम करना है, वो करना है नहीं, वो सबको पसंद है क्योंकि मशीन में ऐसा काम नहीं होता है, ये सिर्फ हाथ से ही होता है। इसीलिए वो कस्टमर बोलते हैं कि छोटा छोटा काम हमें चाहिए। हम 25-30 लोग तो कंटिन्यू काम करते हैं, वर्कर लोग कभी कभी काम करते हैं जिस जिसका टाइम मिलते हैं इससे।
1: द नेक्स्ट चैलेंज फॉर सूरत इज परहैप्स इट्स बिगेस्ट येट, मूविंग अप द टेक्सटाइल वैल्यू चेन। The city's strength has always been volume. But the future will demand much more. Garments, fashion, technical textiles, premium products, brands and exports. India's Production-Linked Incentive or PLI scheme for textiles has approved 170 companies nationally, covering man-made fiber apparel, MMF fabrics and technical textiles. The PLI scheme is an Indian government program that gives financial rewards to companies based on their increased sales of products made inside India. Gujarat has 46 approved companies under the PLI scheme. And just beyond Surat, another piece of this future is taking shape. Inspired by the 5F vision of the Prime Minister, farm to fiber to fabric to fashion to foreign, Gujarat is setting up Pradhan Mantri Mitra Textile Park at Vansi Village in Navsari District. Spread across 1,142 acres, the project is planned as an integrated textile and apparel ecosystem and has an estimated cost of around 2,398 crore rupees. The park is expected to bring different stages of the value chain closer together. From manufacturing and processing, to garments, logistics and supporting infrastructure. It is an attempt to move from fragmented production towards a more integrated textile ecosystem, transitioning Surat from a raw fabric supplier into a high-value global garment and textile export powerhouse.
3: Over the past several decades, Surat has kept weaving to changing markets, changing technology and changing times. At this

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: स्मॉल, आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: What if Pac-Man wasn't on a screen anymore but running around the room with you? That is the idea behind a new gaming venue in London, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: आप पूरी पिक्चर देख लो।
3: लोन ऑप्शंस बिग,
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
5: ब्रांच नेटवर्क बिग,

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
0: स्मॉल
2: स्मॉल
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
5: यार लोन भूल गया मैरी.
6: जस्ट अ गुड बैंक ना.
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
7: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
8: What if Pac-Man wasn't on a screen anymore but running around the room with you? That is the idea behind a new gaming venue in London, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल. अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैडी.
4: जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: What if Pac-Man wasn't on a screen anymore but running around the room with you? That is the idea behind a new gaming venue in London, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.

0: Daddy, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी एवरीथिंग देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Mary? Suggest a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: North Korea says it tested an intermediate-range strategic missile that involved the use of AI, hours after Seoul said Pyongyang had launched a ballistic missile.
1: इस बारी दिले कुछ ज्यादा हो गया है तो इट इज गोइंग टू हर्ट अस नो डाउट
0: इंडियन एयरफोर्स चीफ वॉर्न्स अबाउट इंडिया फॉलिंग स्क्वाड्रन नंबर सेज इंडिया अर्जेंटली नीड्स टू एड टू स्क्वाड्रन्स टू स्टॉप द डिक्लाइन एल्स इट विल हर्ट इंडिया

की पुलिस पब्लिक पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में और रिजॉर्ट की पुलिस करते हैं।

0: A story from the 1990s offers a glimpse into just how early Narendra Modi was thinking about digital technology. At a BJP meeting in Madhya Pradesh in the 1990s, Modi, then the party's state affairs in charge, reportedly asked the room a simple question: who has an email ID? The response, according to Union Minister Shivraj Singh Chauhan, was silence. Party leaders started looking at each other. Until veteran BJP leader Babulal Gaur allegedly misheard the word email and asked, "What female are you talking about?" The room burst into laughter. But Chauhan says the anecdote revealed something more significant. Modi was already encouraging party colleagues to use email and was using computers himself at a time when technology was still unfamiliar to much of the political establishment.
1: एक बैठक हुई चुनाव की तैयारी की। उस बैठक में नरेंद्र भाई ने पूछा कि भाई ये बताओ किसके पास ईमेल आईडी है, किस किसके पास। अब यहां तो ईमेल आईडी से कोई वास्ते नहीं था। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, एक क्षण सन्नाटा, फिर बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, वो कहने लगे, नरेंद्र भाई ये क्या फीमेल फीमेल कर रहे हो, ये फीमेल ईमेल से क्या होने वाला है। और ये कह के वो हंसने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर भी व्यंगात्मक भाव थे।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो लोन ऑप्शंस बिग सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग ब्रांच नेटवर्क बिग अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल. अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल, आप पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.
3: The architecture of war is changing. Geography is no longer a shield. The battlefield now stretches from sea to space. Meet the veterans, industry stalwarts, and innovators.
0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege RDM. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.